0: नमस्कार आमै।
1: भलो भलो हुनु पर्ने, धेरै पछि क्या आज त।
0: अब बालाई दमले लग्यो, माया गरेर ल्याकिरहनेले पनि छोडेर गई। दुःखमा थिए आमै।
1: ए आज के सुनाउँछस् त?
0: दुःख के कथा सुनाउँछु।
1: लो सुना सुना।
0: ल

0: चिन्ता नगर है पुण्य, अर्को पाइहाल्छ नि। छोरा नि ठुलो भएछ, कतिमा पढ्छ?
1: अब गाइनेको छोरा हो, के पढ्नु आमै, सारङ्गी रेट्छ। अब यति ठुलो आयोजन छ आमैको, एउटा नाति भइदिए आइसन्छु।
0: त्यही त नि,
1: फेरि सानो मालिक मुगलान भावेलामा छोरो भयो भने त फसादै होला नि आमा।
0: ठट्टा गर्ने बानी नि यसको भाउकै जस्तो छ
1: हो है। हस् आमा, हस् लु है।

0: Sir, there is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है. काफी blood loss.
1: Doctor Ujjav को heal attend. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
0: Sir, there is an emergency case of Meher Garewal. Accident है.
1: क्या नाम बता?
0: Meher Garewal.
1: मुझे ले चलो.
0: Come.

0: ऊ हेर त तिम्रो मामा घर।
1: वाव, कस्तो राम्रो है मम्मी।
0: आमा, हामी घरमाथि मैदानमा आइपुग्यौँ।
2: के तिम्रो लाज हुन्छ कि?